0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। भेजने वाले हैं अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी। वो लिखते हैं,
3: जो निश्चल प्रेम में रहते हैं वो छल समझ नहीं पाते और जो छल में रहते हैं वो निश्चल प्रेम नहीं समझ पाते।
2: जी आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो हमें पहला संदेश मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा।
3: और बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और ख्याति सारवा।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।
3: और छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
2: हम उमंग कार्यक्रम में मासिक संस्करण श्रोता संवाद का बेस

0: खबरी से इंतजार करते हैं। इस कार्यक्रम से महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को प्राप्त होती है। सच मानिए, ये कार्यक्रम जानकारी का महत्वपूर्ण खजाना है। 7 सितंबर के कार्यक्रम श्रोता संवाद में शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर डॉक्टर श्वेता तंवर जी से अजीत सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सरल शब्दों में सुनवाई गई। ये जानकारी सुनवाने के लिए डॉक्टर श्वेता तंवर जी के साथ साथ अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर छत्तीसगढ़ से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सती बाई साहू जी का।
0: ईदूग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका उडुपी जिला कर्नाटक से एच सिद्धार्थ जी लिखते हैं।
1: आप लिखते हैं, आदरणीय कार्यक्रम के बारे में हमारी प्रतिक्रिया
0: जी।
1: स्त्री शिक्षण को आपने प्रोत्साहन देकर महिलाओं में हिम्मत बढ़ाई है। पुराने जमाने में पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक कार्यकलाप ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को लोग खारिज करते थे
0: जी।
1: जेंडर डिस्पैरिटी पर आपका श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब सुनिए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण गंगोत्री क्या है और ये कहाँ स्थित है।
0: इसका उत्तर है साथियों, दक्षिण गंगोत्री दक्षिण ध्रुव पर स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है।
1: और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया।
0: इसका उत्तर है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा उसकी माता को दिया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न था, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के भीतर भूकंप, भूगर्भीय, ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण सुनामी आती है। समुद्र के भीतर भूस्खलन भी इसका मुख्य कारण है।
1: और हमारा अगला सवाल था कि मेघालय शब्द का क्या अर्थ है।
0: मेघालय शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, मेघ और आलय।
1: जी,
0: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो अर्थ बना मेघालय यानी मेघों या बादलों का घर।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
0: गांधी जी द्वारा रचित संभवतः सबसे अधिक चर्चित किताब का नाम है, मेरे सत्य के प्रयोग।
1: जी, और अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हो जाइए तैयार, हमारा आज का प्रश्न है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं।
1: श्रोताओ, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम। तो आज के पहले कार्यक्रम के क्रम में हम सुनेंगे हमारा मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
0: आइए सुनते हैं श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, प्रस्तुत है उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के पहले सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर। तो आज इस क्रम में हम बात करेंगे NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों की। तो श्रोताओं, आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव। आप NCERT के सामाजिक विज्ञान और शिक्षा विभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, आज के उमंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूं और आपने समय दिया मुझको सुनने के लिए, इसका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान एक बहुत अहम विषय है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के बारे में बताने का कोशिश करूंगी।
1: तो डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में NCERT की पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे की विषय वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए और बताइए कि यह सामाजिक विज्ञान से कैसे जुड़ा है।

0: अजीत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी को पता है, जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो विषय तो समाज से जुड़ा ही होता है।
1: जी
0: दूसरा, समाज और प्रकृति में क्या समन्वय है, उसके बारे में भी हम बताने का कोशिश करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से।
1: जी
0: और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बल दिया है कि जब भी हम बच्चों को समाज के बारे में बताने का प्रयास करें तो हमें समाज के जो विषय हैं, जैसे आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये इसका समावेश है। और हम इसको सोशल साइंस कहते हैं, यानी समाज शास्त्र। आप हमारी पाठ्य पुस्तक मिडिल स्टेज की ले लीजिए और आप देखिए कि जितनी भी पाठ्य सामग्री है, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, अतीत के चित्रपट, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से क्या जुड़ाव है,
1: जी
0: इन विषयों को हम अपनी 6वीं, 7वीं, 8वीं में दिए हैं। और उसके अंदर जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे गहन ढंग से, आप देखेंगे कि उसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन है। यानी कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास ले लीजिए, कि समय सारणी से जो भी घटना घटी है उसके बारे में हमारा विषय वस्तु आपको बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ घटनाओं का विवरण हम जब करते हैं तो हमारा विषय वस्तु आपको जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि आपके मन में जिज्ञासा, आपके मन में उस विषय के बारे में और गहन ढंग से कहाँ से लें उसके बारे में, और तीसरा, आप किन गतिविधियों के माध्यम से ये विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रकृति आपदा के बारे में आपकी जिज्ञासा हुई, तो प्रकृति आपदा के बारे में आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं, साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि क्यों ये घटती है और हमें क्या करना चाहिए।
1: जी
0: इसी तरह हमारे पाठ्य पुस्तक में आप देखिए, जो विषय हमारे भूगोल से जुड़ा है, हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो
1: प्राकृतिक संसाधन कह ले,
0: हमारी प्रकृति संसाधन है, वो क्या है, और साथ साथ हम बताने की कोशिश करते हैं उसकी संरक्षणा हम कैसे करें। ताकि आज आपने सुना होगा, हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो छोटी छोटी गतिविधि से हम कैसे अपनी ये धरोहर का संरक्षण करें। जब आप पाठ्य पुस्तक उठाते हैं और ये विषय पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, तो एक गौरव जैसी भावना आती है कि हमारे भारत वर्ष में ये विषय कितना अहम था। हमारे जितने भी पर्सनालिटीज थे, आप कोई भी विषय ले लीजिए, उन्होंने गहन ढंग से अध्ययन करके, विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में ले लीजिए, कितनी अच्छी बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आगे ले जाता है, साथ साथ प्रकृति के बारे में भी बताने का प्रयास किया जाता है। क्यों और क्या, ऐसे सवालों का जवाब भी हमारी ज्ञान परंपरा में आपको मिलेगा जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे।
1: जी,
0: अनेकता में एकता एक ऐसा पाठ है हमारी सभ्यता संस्कृति में जुड़ा है हमारे पाठ्य पुस्तक में, जहां मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की कि हमारे जो रीति रिवाज हैं या हमारी जो फेस्टिवल्स हैं, वो विभिन्न तो होते ही हैं, लेकिन हर विभिन्नता में एक एकता की भी
1: भावना
0: आती है। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको एक सूत्र में जोड़ करके हमारी विकसित यात्रा, सभ्यता और संस्कृति का भी एक बहुत अहम स्थान है, और हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसको अच्छी तरह से 6वीं, 7वीं, 8वीं में दर्शाया है। इसको कृपा करके पढ़िए और अपने प्रांत में भी देखने की कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं और किस तरह से हम उससे जुड़े रखते हैं। कितने समय से ये शुरू हुआ, लेकिन आज भी हम उसको बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, गाना गाते हैं। और आप देखिए, आज हम लोग की जो हेरिटेज है, आर्ट है, कितना लोग इसको लोकप्रिय ढंग से अपने जीवन में इसको उतारते हैं। और बच्चे, आप लोग तो अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी इसका समावेश करते हैं, और ये सारी चीजें आपको हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलेगी। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी

0: एक्टिविटीज के बारे में भी चर्चा किया गया, कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं हमारे भारतवर्ष में, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि बार्टर से आज मोनेटाइजेशन में
1: हम वस्तु वो यात्रा से, जी। हाँ,
0: हमारी यात्रा कैसे रही, साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में भी विभिन्न ढंग से बताया गया है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये भी आप पाएंगे। और लोकतंत्र के बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये एक जुड़ाव जो हमारी सामाजिक विज्ञान को बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम इसको पढ़ें, एग्जाम्पल्स कैसे हम दे सकें, और साथ ही साथ जब हम विश्लेषण करें तो तथ्यों के आधार पे हमें निष्कर्ष पे आना चाहिए, ना कि केवल पढ़ करके, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारे NEP 2020 में दिया गया है, वो भी आप तथ्यों का पहले एकत्रित करिए, उनका विश्लेषण करिए, तब आप नतीजे पे आ सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, गतिविधि कई दी हैं जो आप कर सकते हैं और खुद जुड़ सकते हैं इस विषय से, क्योंकि जब हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ा है। कुछ ऐसे हमारे पाठ हैं जो अतीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अतीत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक हमारा ऑब्जेक्टिव है सामाजिक विज्ञान का, कंटिन्यूटी एंड चेंज, किस तरह से हम धीरे धीरे प्रगति किए और क्या बात है कि कुछ चीज आज भी प्रासंगिक है, उसको हम लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमारी आर्ट है, संगीत है, हमारी सभ्यता संस्कृति है,
1: अलग अलग कलाएं हैं हमारी,
0: अलग अलग कलाएं हैं, इन सबको हम आज भी जोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें खुद को गौरव महसूस कराते हैं और हमारी आइडेंटिटी को, इंडियननेस को स्ट्रेंथन करने का कोशिश करते हैं।
1: जी, तो प्रोफेसर गौरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से इस पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी दी। मेरा एक प्रश्न और है आपसे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इस पुस्तक को पढ़ाने के लिए आप शिक्षकों को किस प्रकार का निर्देश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं भी शिक्षक रह चुकी हूँ और मेरा अपना मानना है कि हम विधि को बहुत ही सरल ढंग से और बाल केंद्रीय अगर हम बनाते हैं तो बच्चे का जुड़ाव होना चाहिए। कक्षा में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों को हम समय दें कि वो प्रश्न करें, अपनी जिज्ञासा के बारे में औरों को भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक किरण बच्चों के अंदर लाते हैं कि ये विषय केवल पढ़ने का ही नहीं है, समझने का भी है, और आप खुद उसके साथ संवाद करें, क्योंकि बुक तो आपके सामने है लेकिन जब आप उसको आंखों से भी पढ़ेंगे, उसका अध्ययन भी करेंगे और उसको चर्चा करेंगे, इसका मौका आपको बच्चों को देना होगा। हम सब मानते हैं कि क्लास का समय जो है निर्धारित होता है, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाने के लिए आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, यानी जो भी विधि पाठ में दी गई है उसको हम एक टीचिंग एड के माध्यम से बता सकते हैं, बच्चों का समावेश कर सकते हैं, क्लास में बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात बताएं, एक चर्चा करने का मौका मिले उनको, साथ ही साथ उनको हम डिबेट करने का मौका दें। और अगर हमने कोई पाठ के बारे में बताया, सभ्यता और संस्कृति मान लीजिए हमारी पाठ है, तो हम बच्चों को आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हो या हम बच्चों को भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, तो उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं, यानी उनको विजिट कराने की बहुत जरूरी
1: उनको जरूरत है, उनको
0: लेके जाएं। और हमारा प्रयास ये होता है कि मान लीजिए गांव में कोई अच्छा आर्टिजन है या कुम्हार है, लोहार है, इनसे बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये जो कार्य हैं, ये कार्य कितने मुश्किल हैं और इनकी जो उन्होंने चीजें बनाई हैं वो आम जीवन से कैसे जुड़ा हो, और इससे बच्चों का जुड़ाव संस्कृति से भी होगा, कार्य से भी होगा, अर्थव्यवस्था से भी होगा। तो आप देखिए, आपने एक लिंकेज बताया, इंटरडिसिप्लिनरी भी बताया, बच्चों को अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य जोड़ने की कोशिश की और साथ ही साथ पाठ को रुचिकर बनाया। बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, सपना होता है उनके मन में, और ये आप ही कर सकते हैं। विषय को इतना रुचिकारक बनाइए कि बच्चों को लगे हाँ, समाज शास्त्र में है जिससे हम अपने जीवन को जोड़ सकते हैं। बच्चों के अंदर प्रोजेक्ट बनाने की बहुत जिज्ञासा होती है, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ और जब भी मेरे क्लास में कोई विषय मुझे अच्छा लगता था तो मैं सोचती थी कैसा

प्रोजेक्ट बनाऊं, क्या पेंटिंग करूं, क्या एक प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाऊं या ऑडियो वीडियो बनाऊं, तो ये सारी चीज़ें अगर उनके मन में आ जाती है तो इसका मतलब वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और जब ऐसा होता है तो समाज का जो अन्य विषय है उससे भी जुड़ाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे छठी से आठवीं की जो पाठ्य पुस्तक है वो एक है, इट इज़ वन टेक्स्ट बुक। और इस टेक्स्ट बुक की जो विशेषता ये है कि वो जितने भी विषय हैं उसको पिरो करके एक पाठ बुक में बनाया गया है। और इसको आगे करते हुए, क्योंकि आप पे बहुत

0: सारे विषयों से जोड़िए, पिरोइए और उनके जीवन से जोड़िए और ये बताने की कोशिश करिए कहाँ थे और हम कहाँ आ गए
1: जी।
0: ये बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी एंड चेंज।
1: जी, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि हम ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की ओर से कि इस पुस्तक में, यानी समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इसी पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, हम ये जानना चाहेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अजीत जी।
1: जी,
0: मैं बताने की कोशिश करूंगी कि हमारी पाठ्य पुस्तक में महिलाओं को जहां जहां उन्होंने योगदान दिया है उसको समावेश किया है और उन्होंने बॉक्स आइटम में भी दिया है, लेख में भी उनका विवरण किया है और जहाँ जहाँ समाज में अपना योगदान दिया है उसके बारे में भी दिया है। जैसे आप ले लीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6, कक्षा 6 में जो महिलाओं के बारे में दिया गया है, जैसे कि गार्गी जी के बारे में बताया है, वंदना बहादुर मैदा के बारे में दिया गया है जो एक सरपंच थी अपने गांव की और उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था। इसी तरह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में कनगी महारानी के बारे में बताया गया है और प्रभावती गुप्ता जी के बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में मुतम्मा के बारे में बताया गया है और हमारी कक्षा 8 की पुस्तक में रानी दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी अकब्बा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन महिलाओं का योगदान जिस जिस क्षेत्र में किया है उसके बारे में दिया गया है। और अगर आप हमारी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक देखें तो आप देखिएगा कि कक्षावार जहाँ जहाँ महिलाओं ने योगदान दिया है उनके बारे में चर्चा किया गया है और ये क्यों किया गया है, ताकि आपको भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आप एक खोज करिए कि ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में गहन योगदान दिया है पर कुछ कारणवश, जिनको हम कहते हैं लेसर नोन, उनके बारे में भी आप एक प्रोजेक्ट बनाइए ताकि आपको खुद एहसास होगा कि जब भी समाज विकास के रास्ते पे चला महिलाओं का योगदान हमेशा ही रहा। और आज भी आधुनिक भारत में भी आप देखिए कि हमारी महिलाएं किन किन क्षेत्र में कामयाबी के ढंग से अपना योगदान दे रही हैं। आर्मी में भी देख लीजिए, नेवी में देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, जिनको पहले हम कहते थे अनकन्वेंशनल रोल,
1: हाँ, कार्य के किसी भी क्षेत्र में आजकल महिलाएं देखी जा सकती हैं,
0: सभी क्षेत्र में
1: जी
0: उनका योगदान है। और हम बहुत गर्व के साथ भी कहना चाहते हैं कि हमारी एक पाठ्य पुस्तक फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के में जब भी पुस्तक आप उठाइए तो खेल के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है वो बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। तो आप देखिए कि पाठ्य पुस्तक में विजुअल कंटेंट में महिलाओं का समावेश है, जिसको हम कहते हैं जेंडर इंक्लूसिवनेस।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर गौरी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और एनसीईआरटी की इस विशेष पाठ्यपुस्तक के बारे में आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी। तो श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारी आशा है कि इसके द्वारा हमारे श्रोता बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी, आपने मुझे मौका दिया। हम अपने सारे श्रोताओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना, पर मैं और धन्यवाद आपको दूंगी जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़िए और एक यात्रा में जाइए कि हम और इसको अपने जीवन से कैसे जोड़ें। तथ्यों को एकत्रित करिए और कोशिश करिए कि पाठ में आप और क्या जोड़ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद सभी को, आपको अजीत जी
1: धन्यवाद। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता संवाद। तो अब सुनते हैं आज का अगला शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है आम का पेड़।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बच्चों को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा बताया गया है कि मात्र पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी लगातार देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है।
0: आम का पेड़।
2: दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा,
3: ऐसे ही मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा।
2: उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा।
4: अरे वाह, पौधा निकल आया।
2: कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला,
4: ये पौधा मैंने लगाया है, ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे।
2: दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले,
5: क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो।
2: प्रिया बोली,
6: पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे का आम खाएंगे।
2: उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे, फिर प्यार से बोले,
5: अरे बच्चों,

0: छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे।
1: ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला,
2: कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे।

0: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आम का पेड़।
1: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
2: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
0: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
0: मुकुल सिंह,
3: वीरेंद्र
0: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது தேசிய கல்வியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் வழங்கிய NCERT விளம்பரதார் நிகழ்ச்சி.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai. Har somvar ki tarah aaj bhi hum aapke prashnon ko seedhe karyakram mein shamil karenge. Vyapar, arthavyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap in numbron par hame phone kar sakte hain. 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी नमस्कार, धन्यवाद.
1: और अब हेडलाइंस के साथ है निशित कुमार.
0: द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22,550. इंडिया एंड स्विट्जरलैंड इंक सेवरल अग्रीमेंट्स टू प्रमोट कोऑपरेशन इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज, मोबिलिटी सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड एशियन स्टॉक मार्केट्स एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक तेजी में रहे. सेंसेक्स में आई 450 अंकों से अधिक की बढ़त. निफ्टी 22,500 के स्तर को पार कर गया. भारत और स्विट्जरलैंड ने यातायात तकनीक, मोबिलिटी प्रणाली और मूलभूत ढांचे में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर. और एशियाई शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए बंद.

0: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब रुख करते हैं शेयर बाजार का. चार दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज लगभग 0.6% की बढ़त पर बंद हुए. सेंसेक्स 473 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 72,282 पर बंद हुआ. निफ्टी 134 अंक बढ़कर 22,556 पर दर्ज हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.7% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.5% की तेजी पर बंद हुए.
0: The benchmark domestic equity indices rose around 0.6% today, snapping a four-day losing streak. The Sensex gained 473 points to close at 72,382. The Nifty climbed 134 points to settle at 22,556. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index jumped 0.7% and the small-cap 100 index advanced 0.5%.
1: और सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 20 के शेयर आज बढ़त में रहे. सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में ITC 4.5%, Eternal 2.5% और भारतीय एयरटेल 2.4% के उछाल में रहे. वहीं सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों पर नज़र डालें तो HCL Tech 3.7%, HDFC बैंक 2% और सन फार्मा और इन्फोसिस प्रत्येक 1.5% की गिरावट में रहे.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of 28 sectors edged upwards. Among the top gainers, telecommunication jumped 2.1%, mid-small private bank rose 1.7% and FMCG added 1.5%. In contrast, hospitals shed 2.3%, healthcare fell 1.1% and insurance dropped 0.3%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,448 companies declined, 2,052 advanced and 260 remained unchanged.
1: और रुपए पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले मामूली मजबूती के साथ 96.30 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. इस बीच हमारे साथ हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उन्हें शामिल कर लेते हैं. जितेंद्र है जयपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत. सवाल पूछिए.
2: हाँ हाँ सर, आपका भी मैडम धन्यवाद. सर मेरा दो प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, मैं नाम तो नहीं लूंगा नियम के मुताबिक. एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका र्यूमर कुछ दिन पहले आया था तो उसके काफी प्राइस डाउन हुए, अभी 700 पे चल रहा है. तो मैं उसमें पिछले 2-3 महीने से बाइंग कर रहा हूँ, तो क्या स्ट्रेटजी सही है पहला. और दूसरा, जो रजिस्ट्रार कंपनी होती है IPO का जब आता है रजिस्ट्रार कंपनी, तो भी बहुत पुराना रजिस्ट्रार कंपनी है, उसका IPO आया था तो उसमें मैंने लिया था तो 150-200% प्रॉफिट पे है, तो उसको क्या होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्योंकि वो रजिस्ट्रार कंपनी है तो चलेगा ही चलेगा कंपनी जैसे.
3: जितेंद्र जी, आपने शुरू में कहा कार्यक्रम के नियम के मुताबिक हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं और आपने दो खास कंपनी के शेयर के बारे में पूछा है, तो हम क्षमा चाहेंगे, हम उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते.
1: और आपकी एक छोटी सी टिप्पणी, आज जो हमने बढ़त देखी है बाजार में चार दिनों के बाद, इसको आप कैसे लेते हैं? अगर थर्सडे को भी हम देखें तो एंड में 700 पॉइंट्स की रिकवरी हुई थी, सो क्या कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट लौट रहा है?
3: देखिए, दो वजह है. एक तरफ आप देखिए कि सऊदी अरब ने जो है वो तेल के दाम घटा दिए, तो वो एक अच्छी बात रही. लेकिन दोपहर होते होते एक खबर आई कि वहाँ पे पाइपलाइन बंद कर दिया गया क्योंकि उस पर हमला हुआ है, तो एक मिश्रित था. तो अगर वो खबर नहीं आती तो शायद आज शेयर बाज़ार और ऊपर जाता. तो एक तो आप कह सकती हैं कि इसका एक सकारात्मक रुख हमने देखा है. दूसरी तरफ क्या है कि बाज़ार बहुत नीचे आ चुका है और अब एक खरीदारी का, जिसे कहते हैं कि एक माहौल बन सकता है, क्योंकि अब निचले स्तर पर आपको बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो बहुत ऊंची कीमत पर थे, उनके भाव बढ़े हैं, तो उसका असर जो है आप देख रहे हैं कि आज बाज़ार में जो हमने सकारात्मक रुख देखा. और आपने बीते सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन देखे, उस दिन भी तेज़ी आई. और एक और जो हमने अच्छी चीज़ देखी है कि जो हमारे विदेशी निवेशक

0: Stated Swiss President Guy Pommerlin's commitment to India-Switzerland relations. He said that India implemented the historic Trade and Economic Partnership Agreement with the European Free Trade Association, EFTA, countries last October. Mr. Modi noted that the agreement was India's first free trade agreement with a European economic bloc. He described it as an ambitious framework for investment, innovation, employment and shared prosperity. The Prime Minister highlighted that under the agreement, India aims to attract $100 billion in investment and create 10 lakh direct jobs over the next 15 years. Prime Minister Modi said that India and Switzerland have taken several important decisions to enhance market access for Indian exports in Switzerland.
1: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे.
0: Shishir ji, we already saw the India EU FTA being signed, which was obviously, you know, termed as the mother of all agreements, trade agreements. Now this agreement with EFTA countries, four countries, if I am given to understand, Liechtenstein, Iceland, Switzerland and Norway, these are the four countries. Now these are the four a bloc within the EU, if I may say. So how do you see this? And of course, you know, today the agreements which are signed between India and Switzerland, it adds to that. So how do you see this going?
2: इससे पहले कि हम आपकी प्रतिक्रिया लें, गुरुग्राम से हमारे श्रोता उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं. उमेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें.
3: नमस्कार मार्केट मंत्रा. मेरा सवाल ये है कि अगर आज की डेट में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या लार्ज कैप्स सही रहेंगे या गोल्ड का इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? और अगर आप एक प्रतिक्रिया और दे पाए कि मान लीजिए कोई 20% ऑल्दो मतलब 20% पेमेंट देके किसी अच्छे बिल्डर में एक बढ़िया फ्लैट बुक कर लिया जाए, ऑल्दो वो लिक्विड और अनलिक्विड वाली चीज जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रतिक्रिया देना चाहें.
4: देखिए, जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि शेयर और सोना, देखिए मेरे हिसाब से आप दोनों में आप कर सकते हैं. उम्र के हिसाब से अगर आपकी उम्र अगर 50 वर्ष से कम उम्र की है तो आप शेयर में उसका पोर्शन ज़्यादा रखिए. अगर आप 60% रख सकते हैं, 40% आप सोने में रख सकते हैं. और अगर आपकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा की है तो आप थोड़ा सा उसको पलटिए. और उसके अलावा ये भी है कि उसका एक हिस्सा आप ऐसे जगह पे लगाएं जो आपके लिए सुरक्षित जो है वो निवेश बन सके, जिसे हम डाकघर की बचत योजनाएं कहते हैं या बैंक की फिक्स डिपॉजिट है, वो आपके लिए बेहतर होगा. दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या हम 20% दे करके एक फ्लैट बुक कर लें, देखिए निश्चित तौर पर घर में निवेश करना, चाहे वो आप उसको इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं या निवेश करने के लिए ले रहे हैं, एक अच्छा जरूर निवेश होता है. लेकिन ध्यान रहे कि आप जिस भी बिल्डर को चुनें वो एक विश्वसनीय बिल्डर हो, जिसकी डिलीवरी का रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसने काम अच्छा किया हो. क्योंकि दिक्कत क्या होती कि कई बार आप पैसा लगा देते हैं और उसमें अगर जितनी भी देरी तो आपका पैसा एक तरीके से फंस जाता है. तो अगर आप डिलीवरी वाले सिस्टम पे देखें कि यदि वो बेहतर हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा. मेरे ख्याल से आप ये भी कर सकते हैं कि 100 को आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए. एक, जैसा मैंने कहा, आपके उम्र के हिसाब से शेयर और सोना. दूसरा विकल्प है शेयर, सोना और डाकघर की बचत योजनाएं. और आप पूरा का पूरा पैसा अगर रियल एस्टेट में ही लगाना चाहते हैं तो आप बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें
0: और बिल्डर रेरा अप्रूव भी हो.
4: बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल.
0: नेक्स्ट कॉलर इज मोहक फ्रॉम फरीदाबाद. मोहक, वेलकम.
5: हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग पैनलिस्ट. माय क्वेश्चन इज कंसीडरिंग द वोलेटाइल माइक्रो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड, इज इट बेटर टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक बॉन्ड्स एज कंपेयर्ड टू इक्विटी मार्केट्स?
4: Yeah, that's a good option, but I would say that it also, because I mean the prices at which the most of the value stocks are available, they are at a very lucrative, and you can get an opportunity to enter into those stock. So you can have some kind of hedging through the bond. I mean, bond is use the bond as a hedging. So suppose that you have say 100 rupees, and if your age is say less than 40 years, then you can go for 60-40, 60 in the equity and the 40 in the bond. But if you are exceeding 50, then I would say that put

0: ₹60 in the or ₹70 in the bond and then put remaining ₹30 in the equity, because there you will have less time as compared to when you are less than 40 years. So this kind of equation you can say, and at any given point of time, if the value stock is available at a very low price, it is good to enter. You may have some kind of volatility, but if you are giving some time to the stock market, to your capital, then there is a good possibility of getting good return, because stock market is not just about investing money, it is also about investing patience.
1: And briefly, bond market mein risk कम है,
0: बहुत कम होता है वहाँ पर. आपको मूल और ब्याज की एक गारंटी जो है सरकार की, अगर आप सरकारी प्रतिभूति में लगा रहे हैं तो आपको वहाँ मिलता है. अगर कंपनियों के बॉन्ड में आप लगा रहे हैं तो थोड़ा जोखिम होता है, अगर कंपनी डूब गई तो क्या होगा. लेकिन उस सूरत में भी जो कर्ज देने वाले होते हैं उनका पहला हक बनता है, जबकि शेयर में जो पैसा लगाते हैं उनका आखिरी में हक बनता है, तो वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है.
1: अब हमारे अगले कॉलर हैं नई दिल्ली से, अमित झा. अमित जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें.
2: नमस्कार सर जी को.
1: जी नमस्कार.
2: जी ना सर, नमस्कार सर.
0: नमस्कार
2: सर, आपसे प्रश्न ये है कि अभी जो इस हफ्ते से Q2 के कंपनी का नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है सर, तो इसी हफ्ते दिग्गज आईटी कंपनी के भी रिजल्ट आने हैं सर, तो आईटी कंपनी का कैसा मतलब प्रदर्शन रह सकता है. और दूसरी चीज सर कि ऑटो और मेटल अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए आज की रैली में देखा जाए तो, और ऑटो सेल्स के पिछले दिनों आंकड़े जो आए थे सर तो खासा उतना तो वो निराशाजनक थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद ऑटो सेक्टर की कंपनियां बहुत बुरी तरह से पीटी थी सर. धन्यवाद सर.
0: देखिए, मेटल मेरे हिसाब से समय एक बहुत ही बेहतर विकल्प है, और मेटल कंपनियों के शेयरों में अगर मैं आज की बात करूं तो दो तीन कंपनियों के जो पहली तिमाही के नतीजे रहे हैं, वित्तीय नतीजों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कामकाज की बात कर रहा हूं, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो उसमें उम्मीद एक ज़्यादा है. ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए मुझे लगता है कि निवेशक त्योहारी मांग का इंतज़ार कर रहे हैं. अगर देखिए, अब अगले हमने 10 दिनों के बाद जो है हमारा नवरात्रि शुरू हो रहा है, उस समय में उसकी खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है, तो आप देखेंगे कि ऑटो में जो है वो वापसी एक होगी. और आज की रैली में भले उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि आज की रैली अगर आपने देखी होगी तो उसमें ज़्यादा जो योगदान था उसमें जैसे FMCG का योगदान था या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का योगदान था, वहाँ पर अगर आप IT सेक्टर बात करेंगे तो IT सेक्टर में नुकसान ही हुआ था. लेकिन मेरे हिसाब से जो तिमाही नतीजे आएंगे, जो 10 और 11 से शुरू होने चाहिए, अमूमन 10 और 11 तारीख को पहली बड़ी कंपनी के नतीजे आते हैं, वो नतीजे थोड़े से अच्छे रह सकते हैं, उम्मीद ये की जा रही है. क्योंकि बीच में जब AI कंपनीज ने कहा कि हमें ज़रूरत तो पड़ेगी ही, ये जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं जिनके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा AI कंपनीज ने भी कहा कि हमें अपनी गति को जो है वो धीमी करने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ऑटो और IT दोनों में एक अगर 3 से 5 साल का टाइम होराइजन लेकर के चलें तो एक बेहतर विकल्प है. लेकिन इनमें जो मेरे लिए एक जो पहला पसंद आएगा वो मेटल सेक्टर होगा.
1: लेते हैं अगली खबर. भारत के इस वर्ष दिसंबर तक कम से कम 3 और देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते संपन्न करने की उम्मीद है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है. उन्होंने बताया कि कनाडा और रूस सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौतों पर बातचीत चल रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है.
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement. The agreement's negotiations are still ongoing, although we'd like to believe that both the sides have reached a plateau beyond which giving or taking might be very, very difficult. But maybe if there are rooms to operate from, both sides would do it.
1: So, ब्रीफली आप जैसा भी पूछ रहे थे मेरे को एंकर, उसी से जुड़ी ये स्टोरी है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैं, और जैसा इन्होंने कहा कि इंडिया EU डील एक परफेक्ट एग्जांपल है परफेक्ट डील की. आपको लगता है कि जो इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है?
0: दो पहलू हैं, एक हमारा जब हम मुक्त व्यापार समझौता करते हैं और एक हमारा निवेश संवर्धन समझौता करते हैं. ये जो आज वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो बात कही है वो निवेश संवर्धन के ऊपर बातचीत की है, और देखिए उसमें जो हमारा पुराना

0: बना हुआ था उसमें काफ़ी बदलाव किया जा रहा है और कोशिश यह है कि उसमें विवाद कम से कम हो ताकि निवेशकों को एक एक सुरक्षित और एक निश्चित करने वाला माहौल मिले।
1: राइट, एंड द नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। रत्नाकर जी,
2: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि जब भी शेयर मार्केट में हम हमारे स्क्रिप्ट खेल करते हैं तभी जो कुछ उसमें अमाउंट आती है उसमें से इनकम टैक्स जो आता है वो कट होता है क्या, कितना इसके ऊपर टैक्स कट होता है क्या, और वो है, और आने वाले समय में ऑयल के शेयर कैसे रहेंगे?
0: रत्नाकर जी, अगर आपने बेचा है कोई भी शेयर और अगर आपको मुनाफा हुआ है तो आपके AIS में वो दिखेगा, फिर आपको जब आप उस पर कैपिटल गेन जो है वो अलग से पे करेंगे। आपके पास जो बिक्री के बाद पैसा आता है आपके खाते में उसमें STT जरूर कटा हुआ होता है, STT सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो है, बाकी कैपिटल गेन आपको अलग से उसका भुगतान करना पड़ता है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि तेल कंपनियों के शेयरों की क्या स्थिति होगी। देखिए, जो भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में आप थोड़ी तेजी देखेंगे जब कभी भी कच्चा तेल ऊपर जाएगा, और अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो $100 प्रति बैरल के ऊपर भाव जो है वो बने हुए हैं, लेकिन जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके लिए शायद अच्छी खबर नहीं रहेगी।
3: जैसा हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर है और खाद्य मुद्रास्फीति पर चिंता बनी हुई है। समिति 3 दिवसीय बैठक के अंत में निर्णय की घोषणा से पहले मुद्रास्फीति के आउटलुक और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। रेपो दर में आखिरी बढ़ोतरी फरवरी 2023 में हुई थी जब RBI ने दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। इसके बाद 2023-24 के दौरान दर में कोई बदलाव नहीं किया गया और 2025 में दर में कटौती का चक्र शुरू हुआ। वर्तमान में नीतिगत रेपो दर 5.25% है। जैसा कि आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आशा है कि कल कटौती बढ़त होगी 25 आधार अंक
0: जी, ये इसलिए भी है क्योंकि महंगाई दर में बढ़ने का सिलसिला बना हुआ है, तो शायद हमें उसका असर नीतिगत ब्याज दर पे देखने को मिलेगा।
1: And how much does the the Fed kind of sets the template for that?
0: See, Federal Reserve is always a template for many of the developing economies and also the emerging markets. So when the Federal Reserve is increasing the rate, that is giving a signal that the global inflation is also on the rise. Right. So that could be one of the reason why RBI is also talking about that.
3: Right. अब चलते हैं एशियाई बाजारों की ओर। एशियाई बाजारों पर नज़र डालें तो वहाँ पर आज बढ़त का रुख था। ताइवान का ताएक्स 2.5% उछल गया, जापान के निकेई 225 सूचकांक में 2.4%, सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.5%, और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.3% की वृद्धि हुई। इस बीच चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार आज बंद थे।
1: एंड मीनवाइल वी आर जॉइंड इन बाय योर कॉलर फ्रॉम असम, शुक्रत लिम्बो, वेलकम।
4: सर, गुड इवनिंग सर।
3: जी, जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए।
4: सर, मेरा प्रश्न ये है कि सर, NPS में जो सरकार द्वारा कोई भी स्कीम में NPS में लगाया हुआ है सर, तो वो सरकार द्वारा लगाया हुआ है तो हम उसको स्कीम चेंज करने से हमें फायदा है या उसी सरकार द्वारा लगाया हुआ स्कीम में रहने से फायदा है, मेरा प्रश्न यही है।
0: नहीं, बिल्कुल, आप साल में एक बार बदल सकते हैं और आप तय कर लीजिए कि आपको ज़्यादा सुरक्षित माध्यम अपनाने हैं या फिर आप शेयर में पैसा रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है।
3: और एक इम्पॉर्टेंट खबर, नई परचेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रणाली इस महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगी। नए ढांचे के अंतर्गत ₹2,000 तक के UPI लेन देन पर MDR शून्य होगा। छोटे व्यापारी इस चिंतन में होंगे कि क्या उन्हें अपने मौजूदा QR कोड को अपग्रेड करने या बदलने की ज़रूरत है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के अनुसार ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौजूदा QR ढांचा सामान्य रूप से कार्य करता रहेगा। व्यापारियों को अपने वर्तमान भौतिक QR स्टैंड या साउंड बॉक्स को बदलने, फिर से पंजीकृत करने या संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना किसी रुकावट के दुकानों पर वर्तमान में प्रदर्शित सभी UPI QR कोड पेमेंट को प्रोसेस करते रहेंगे। NPCI ने स्पष्टीकरण दिया है कि व्यापारी पहले की तरह ही अपनी मौजूदा व्यवस्था के द्वारा ही ग्राहकों से राशि प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी बैंक शाखा में जाने की, QR कोड बदलने की या अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: एंड ग्लोबल global crude oil prices declined today as exports from West Asia increased and G7 nations pledged to boost supplies. Brent crude was trading 0.4% down at $101.88 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 1.4% lower at $89.78 per barrel at the time of writing this report.
3: उधर भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज मामूली बढ़त से 1,48,198 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. चांदी 1.5% के उछाल से 2,24,157 रुपए प्रति किलो पर थी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आप आए शिशिर और हमारे श्रोताओं को आपने बहुमूल्य जानकारी दी.
1: धन्यवाद. थैंक यू शिशिर जी. एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. The benchmark domestic indices rise. Sensex adds over 450 points. Nifty settles above 22,550. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. And Asian stock markets end in the positive territory. That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். இனி தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई. इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है. यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है. इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे.
1: राष्ट्रपति पहमला ने कहा कि यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे. घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुरजेटो अब्लाक्वा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है. घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अंकरा रिसेट के दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी. निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है. सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था. आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागिल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागिल ने चेनरे रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। अगले 4 मैच 9, 11, 14 और 17 अक्टूबर को रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहरमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई. इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है. यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है. इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे.
1: राष्ट्रपति पहरमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहरमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया. भारत में राष्ट्रपति पहरमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे. घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटे अबलाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है. घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अकरा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी. रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं. दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं. दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है. निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है. सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है. चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा. स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की. तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है. पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा. मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

0: இதுவரை நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சியில் இனிய திரைப்பட பாடல்கள் கேட்டு ரசித்தீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திருக்க டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई. इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार

0: और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुजेटे अब्लाकुआ के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा के अकरा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज एमवी रोयाद ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि 1 भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरेथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम की प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाइना ओपन टेनिस में सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान डेनिल मेदवेदेव के अयोग्य घोषित होने के बाद नोवाक जोकोविच फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला 5वीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्स डी मिनोर से होगा। महिला टेनिस में अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफ ने चीन के खिलाड़ी सुन शिन रान को 7-5, 6-1 से हराकर अंतिम 16।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। India and Switzerland yesterday signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between PM Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas, including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, PM Modi said, During their meeting, the two sides identified

0: இதுவரை நெஞ்சம் மறப்பதில்லை கேட்டோம். இனி தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामुलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहामुलान ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन

0: में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटे अब्लाक्वा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अकरा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज एमवी रोयाद ममादोव पर हुए हमले में दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल तीन भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैरकानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम की प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष बी इब्राहिम। India and Switzerland yesterday signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between PM Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas, including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, PM Modi said during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan yesterday and hosted a banquet in his honor. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu

0: இதுவரை பண்டிட் பிரிஜ் நாராயணன் அவர்களின் சரோடு இசை கேட்டோம். இனிய ராகத்தினை தொடர்ந்து ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தின் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहामलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकोड जेटे अब्लाक्वा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक

जहाज एमवी रोयाद मामादोव पर हुए हमले में दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल तीन भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यमन सरकार ने हुती के ठिकानों पर बड़ा सैन्य हमला शुरू किया है। सरकारी बलों का दावा है कि उन्होंने लाल सागर तट पर अहम रणनीतिक ठिकानों पर के आसपास बढ़त हासिल की है। यमन की सशस्त्र सेनाओं ने कहा कि उन्होंने सादा, अलजोफ, ताइज और पश्चिमी तट पर हुती ठिकानों पर 1000 से अधिक हमले किए। यमन सरकार की ओर से शुरू किए गए इस हमले में सऊदी अरब की ओर से बड़ी सैन्य मदद दी जा रही है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद मम्मा 2 पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और चालक दल के कई सदस्य घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चालक दल में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल

0: गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। वोटों की गिनती शुक्रवार को की जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डिसेरोथ, पीटर हेगमन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। India and Switzerland have signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas, including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems, and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks yesterday, PM Modi said, during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan and hosted a banquet in his honor yesterday. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu said that India and Switzerland enjoy warm and cordial relations based on the shared values of democracy and the rule of law. The two leaders expressed confidence that this visit will contribute to further strengthening relations between the two countries. Vice President C.P. Radhakrishnan also attended the banquet. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Himachal Pradesh from today. During the visit, President Murmu will attend the convocation ceremony at AIIMS Bilaspur as the chief guest and confer degrees to trainee doctors. Defence Minister Rajnath Singh will mark the delivery of the 2000th Aero engine by Hindustan Aeronautics Limited, Koraput Division in Odisha today. The Defence Ministry said that the event will mark nearly 6 decades of HAL Koraput's contribution to India's aerospace and defence manufacturing capabilities and operational readiness of the armed forces. The event will also highlight the establishment of a second production line for Shakti engines with an investment of over 200 crore rupees. The additional capacity will support the growing requirements of indigenous helicopter platforms, including the Dhruv Advanced Light Helicopter and Prachand Light Combat Helicopter. By-elections for 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam will be held today. The 5 assembly seats going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Tattanchavadi in Puducherry, and